0: जनता केबल पांच दशक देखी।
1: कॉफी रेडी।
2: वाव, थैंक यू। यो साँझलाई अच्छे सुगंधित बनाउँछु मंगलदीप सेंट 3-in-1 के साथ।
3: आई लव द सेंट।
2: आई लव इट टू। हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
3: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: ओहो आज डाई हो नहीं मजा लगा तो मजा से दवाई करेना कहतू
1: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
0: ए बात तो ठीक कहलो साची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
1: वहां त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहां कई जाइत
0: ए ओसिनो कला से उहै जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
1: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
0: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
1: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क हो मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा
0: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
1: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 और 98-482-80-465

0: گایل بانیه اکستریم انرژی درینک.
1: ओहो आज दाई हो नहीं मजा लगा तो मजा से दवाई करेना कहतू
2: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
1: ए बात ठीक कहलो साच्ची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत
2: वहां त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहां कई जाइत
1: ए ओसिनो कला से उहै जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
2: हो तो स्वास्थ्यक हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेहा
1: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र जाइन वहाँ अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुईत वत्रकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पक्ती रहना जीर्ण रोग काने ढूसी कान खजुइना कान कम सुनना कान दम्मा हुइना बिरामी के उपचार ओ परामर्श वो लंबा समय से कान पक्ती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार फे हुई वकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगैना ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार उपलब्ध फे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी सेवा वहां मिलत
1: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहां ले जाके उपचार करैले से वजह से सुन से कही त
2: एकदम समय में उपचार करैले से उपचार संभव बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
1: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
2: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा
1: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
2: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 वो 98-482-80-465

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान से कम सुनाई वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत है।
0: बस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क OPD सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
2: अब मुड़ और नस संबंधी रोग के खातिर लखनऊ न जाए पड़ी, आपके अपने शहर बहराइच में यहाँ अब विश्व स्तरीय न्यूरो सर्जरी सेवा उपलब्ध है। माँ पीतम्बरा ब्रेन स्पाइन एंड ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पर यहाँ उपचार के खातिर उपलब्ध हैं लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर, जहाँ पर यहाँ बीमार लोगन के उपचार के खातिर लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर शिवम ए मदेसिया से सहूलियत दर में यहाँ उपचार सेवा पावा जा सका जाते है।
3: हमरे यहाँ मुड़े चोट, मुड़े हड्डी के फ्रैक्चर, दिमाग के नस फटे समस्या, ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसेफलास यानी कि मुड़े में पानी की चमक समस्या, दिमागी बुखार, माइग्रेन, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जैसे चेहरा में यहाँ दर्द, रीढ़ के हड्डी में यहाँ ट्यूमर, TB, रीढ़ के हड्डी के फ्रैक्चर के दूरबीन से ऑपरेशन, कमर दर्द, हाथ पैर में यहाँ झनझनाहट, हाथ पाँव में यहाँ सूजन, नस सटका, गटई में यहाँ अकड़न, रीढ़ में यहाँ जनमिन से भावा घाव के उपचार होत है।
2: ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ट्रॉमा केयर, न्यूरो क्रिटिकल केयर और 24 घंटा इमरजेंसी के सेवा उपलब्ध है। ऐसन श्याम डायग्नोस्टिक से रोग जांचक गुणस्तरीय सेवा समेत उपलब्ध है।
3: स्थान अस्पताल रोड V2 मल के सामने बहराइच, आज संपर्क किया जाए। संपर्क नंबर +91-911-844-2021 और +91-99192211। ऐसे नेपाली नंबर 9769249329। ऊपर के दिया नंबर में यहाँ व्हाट्सएप से भी मैसेज और फोन कई सका जाता है।

0: toilet pony, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
3: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
2: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
3: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
2: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
3: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
2: सम्पर्क नम्बर 081-535-717।
4: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हरेक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देत हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान से कम सुनने वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत हैं।
4: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
5: हाँ, तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 98-480-2697, 98-580-2397 और 98-014-83-697।
4: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
6: रंग बहार, रंग बहार।
7: बर्जर संगे उपहारे उपहार। बम्पर मा यामाहा रेजियार।
6: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
7: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि। घर रंगाऊ, खुशी बढाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
6: बर्जर पेन्स।
8: Back to back. Back to back.
9: Hindi song
8: on. Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है। कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
1: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
0: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
1: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
2: नींद नाए हमको हाए जग
3: सोता है। सोचे भन्दा सस्तो मा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्नीचर चाहियो, आउनु होस सोफा हब नेपालगंज।
4: हरेक सामान को खरीद मा 1,000-20,000 सम्म छुट, 10-15 वर्ष सम्म को वारंटी, साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि।
3: स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाड़ी।
4: संपर्क 9795-11-48-70।
3: सोफा हब नेपालगंज,
4: विश्वास मा नंबर 1,
3: क्वालिटी मा सबैभन्दा बेस्ट।

0: toilet pony, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580304 र 98481380।
4: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
4: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
5: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
4: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
4: सम्पर्क नम्बर 081535717।
6: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देत हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान से कम सुनाई वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत हैं।
6: बस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
8: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
6: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
7: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
7: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
6: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
7: संपर्क नंबर 081536465, 98249-80665 और 98482-80465।
9: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्,
0: खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
9: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
0: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
9: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
10: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
0: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
9: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
10: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टिमोट, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98 61 14 16 99।
11: Back to back, back to back.
12: In this song on
11: Stay tuned.

0: drip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: अया कान दुखेर हैरान भइराछ, के गर्ने कहाँ जाने होला।
3: बहिनी किन चिन्ता लिनुहुन्छ, बिर्नोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा हुँदाहुँदै हाम्रा सेवाहरू नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ तथा कान स्वास्थ्य प्रा

0: साथै प्रयोगशालाको पनि व्यवस्था रहेको छ। अस्पताल शनिबार दिउँसो 1 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ।
1: विस्तृत जानकारीको लागि रिनोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा फुलचक्रा 5 नेपालगंज सम्पर्क फोन नम्बर 081530244 98580812244।
2: संबंधी रोग के खातिर लखनऊ न जाए पड़ी, आपके अपने शहर बहराइच में यहाँ अब विश्व स्तरीय न्यूरो सर्जरी सेवा उपलब्ध है। माँ पीतम्बरा ब्रेन स्पाइन एंड ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पर यहाँ उपचार के खातिर उपलब्ध हैं लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर, जहाँ पर यहाँ बीमार लोगन के उपचार के खातिर लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर शिवम ए मदेसिया से सहूलियत दर में यहाँ उपचार सेवा पावा जा सका जात है।
3: हमरे यहाँ मुड़े चोट, मुड़े हड्डी के फ्रैक्चर, दिमाग के नस फटे समस्या, ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसेफलास यानी कि मुड़े में पानी की चमक समस्या, दिमागी बुखार, माइग्रेन, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जैसे चेहरा में यहाँ दर्द, रीढ़ के हड्डी में यहाँ ट्यूमर, टीबी, रीढ़ के हड्डी के फ्रैक्चर के दूरबीन से ऑपरेशन, कमर दर्द, हाथ पैर में यहाँ झनझनाहट, हाथ पाँव में यहाँ सूजन, नस सटका, गटई में यहाँ अकड़न, रीढ़ में यहाँ जनमिन से भावा घाव के उपचार होते है।
2: ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ट्रॉमा केयर, न्यूरो क्रिटिकल केयर और 24 घंटा इमरजेंसी के सेवा उपलब्ध है। ऐसन श्याम डायग्नोस्टिक से रोग जांचक गुणस्तरीय सेवा समेत उपलब्ध है।
3: स्थान अस्पताल रोड भीटू मल के सामने बहराइच, आज संपर्क किया जाए। संपर्क नंबर +91 911 844 2021 और +91 99192211। ऐसन नेपाली नंबर 9769249329। ऊपर के दिया नंबर में यहाँ व्हाट्सएप से भी मैसेज और फोन कई सका जाता है।
4: Back to back.
5: In this song on
4: Stay tuned.

0: राम्रो
1: रङ्गाउँदै देश मेरो एभरेस्ट रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
3: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि
0: घर रंगाओ खुशी बढाओ
3: उपहार जित्ने अवसर पाओ बर्जर पेंस
4: समय बदलियो पुस्ता फेरियो तर साथ साथ उस्तै छ।

0: कॉफी रेडी।
1: वाव, थैंक यू। यो साँझलाई अच्छे सुगन्धित बनाउँछु मंगलदीप सेंट 3-in-1 को साथ।
2: आई लव द सेंट।
1: आई लव इट टू। हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
2: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेन्स।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Sir, there is an emergency. A patient is very serious. Accident हुआ है. काफी blood loss
1: हुआ है. Doctor Ujjav को heel attended. मुझे जरा घर जाना पड़ेगा.
0: Sir, there is an emergency case of Meher Garewal. Accident है.
1: क्या नाम बता?
0: Meher Garewal.
1: मुझे ले चलो.
0: Come.

0: फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते।
1: अंजलि मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी, एक इंसान से नहीं बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शान और शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शान और शौकत, रुतबा मेरा है, तो तुम मेरी हुई ना।
2: देव, मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता किससे कराया गया था। मैं बस इतना जानती हूं कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है उन्हें मैं पूछती हूँ, वही मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन साथी, मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। देव, तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं, भूल जाओ देव, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ।
1: अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी।
2: तो ये तुम भी सुन लो देव, इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी, सिर्फ उनकी।